0: कह दो क्यूट चले निराशा,
1: संत कह दो खना त्रिष्टै कोए,
0: जैसा पावे तैसा कोई होए,
1: पया कीर्तना मिटै कोए,
0: नानक जाने सच्चा सोए,
1: सब घट तिसके ओह करने हार,
0: सदा सदा तिसको नमस्कार,
1: प्रभु की उस्तत करो दिन रात, सब किस बरते तिसका किया,
0: जैसा करे तैसा को थिया,
1: अपना खेल आप करने हार,
0: दूसन कौन कहे विचार।

0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ,
1: पावन से पूर्ण होए आस,
0: भगत पाए अपन परगास,
1: चित कर जाए बसे अविनाशी,
0: कह नानक काटी जम फांसी,
1: सत विचार कहे जन साचा,
0: जना मरे सो काचो काचा,
1: आवागमन मिटे प्रभ सेव,
0: आप त्याग शरण गुरुदेव,
1: नु रतन जन्म का होए उधार,
0: हर हर सिमरत प्राण आधार,
1: अनेक पावना छूटन हारे,
0: सिमरत शास्त्र वेद विचारे,
1: की भगत करे मन लाए,
0: मन वंशत नानक फल पाए,
1: संगला चालस तेरे तना,
0: तू क्या लिपटावे मूर्ख मना,
1: सुत मीत कुटुंब अरवंता,
0: इनते कहो तुम कवन सनाथा,
1: राज रंग माया विस्तार,
0: इनते कहो कवन छुटकार,
1: असास्ती रथ सवारी,
0: झूठा डांप झूठ पा सारी,
1: जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना,
0: नाम विसार नानक पछताना,
1: मुर्की मतू ले याने,
0: भगत बिना वह डूबे सियाने,
1: की भगत करे मन मीत,
0: निर्मल होए तमारो चीत,
1: जन्म कमल राख्यो मन माहे,
0: जन्म जन्म के किल विख जाहे,
1: आप जपे अवरा नाम जपावो,
0: सुनत कहत रहत गत पावो,
1: सार पूत सत हर को नाओ,
0: सहस वाए नानक गुण गाओ,
1: गुण गावो तेरी उतर समैल,
0: विंस जाए होमे विख फैल,
1: होए चिंत बसे सुख नाल,
0: सास ग्रास हर नाम समाल,
1: जान सयान सगली मना,
0: सास संग पावे सच थना,
1: पूंजी संच करो विहार,

0: जब अकार एक अच्छ ना दृष्टेता
1: आप उनका कहते होता,
0: जब तारी आपन सुन समाद
1: बैर विरोध के संग कमात,
0: जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत
1: हरक शोक किसे व्यापत,
0: जब आपन आप पर ब्रह्म
1: मोह कहां किस होवत परम,
0: आपन खेल आप वर्ती जा
1: नान करने हार न दूजा,
0: जब होवत प्रभ केवल तनी
1: तबन मुक्त कहो किसको गनी,
0: जब एके हर अगम अपार
1: तब नरक सुरों को कौन उतार,
0: जब निर्गुण प्रभ सहज सुपाए
1: तब शिव सकत कहो की तठाए,
0: जब आपे आप अपनी ज्योत तरे
1: तब कवन डर कवन कत डरे,
0: आपन चलित आप करने हार
1: नानक ठाकर अगम अपार,
0: अविनाशी सुख आपन आसन
1: लह जाना मन को कहां विनाशन,
0: जब पूर्ण करता प्रभ सोए
1: तब जम की त्रास कहो किस होए,
0: जब अभिक्त अगोचर प्रभ एका
1: तब चितर गुप्त किस पूछ रेखा,
0: जब नाथ निरंजन गोचर अगादे
1: तब कौन सुटे कौन बंधन बाधे,
0: आपने आप ही आचर जा
1: नानक आपन आप आप ही वार जा,
0: जय निर्मल पुरख पुरख पति होता
1: तै बिन मैल कहो क्या तोता,
0: जय निरंजन रिंकार निर्वाण
1: तै कौन को मान कौन अभिमान,
0: जय स्वरूप केवल जगदीश
1: शल शिदर लगत कहो कीस,
0: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे
1: किसे पूर कवन त्रिपतावे,
0: कर्ण करावन करने हार
1: नानक करते का नाहे समार,
0: जब अपनी शोभा आपन संग बनाई
1: तब कवन माई बाप मित्र सुत पाई,
0: जय सर्व कला आप है परवीन
1: वेद कटेव कहा पहुंचीन,
0: जब आपने आप उतारे
1: तो सगन अपसगन कहा विचारे,
0: जय आपने ऊंच आपने आप नेरा
1: ते कौन ठाकुर कौन कही है चेरा,
0: विस्मन विस्म रहे पिसमाद
1: नानक अपनी गत जानो आप,
0: जय अशल अशेद अपेद।

काम क्रोध नगर भपरिया मिल साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हल मंडल मंडा है पर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर डंडौत पुन वड्डा है रहाउ साकत हर रस साधन जानिया तिने अंतर हो मैं कंडा है ज्यो ज्यो चलै चुबह दुख पावै जम काल सह सर डंडा है।

जन्म मरण दुख जाय हो वैसे पुतक समी असह कुरसह झटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह शिर शाहां दा शाह जिस पास बैठे आ सो ही है

बिखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैठ सो बतायो। साच कहूँ सुन ले हो सबाय इंजन प्रेम की उतने ही प्रपायो। काहू ले पाहन पुत्रियो सिरो काहू ले लिंग गरे लटकायो। काहू लखियो हर अवाची दिशा मह काहू पुछाह को शीस नवायो। को बतानक पूजत है पासो को मृतानक पूजन तहयो। को क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। को बतानक पूजत है पासो को मृतानक पूजन तहयो। कोर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवि उबाच बेनती चाओ पई हमरी करो हादर छा। पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा। अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबैत मुकाबो हो। आप हादय मोह बचाबो हो सुखी बसै मोर परवारा। उ सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छानित करदा करिया। सब बैरण को आसन करिया पूर्ण होए हमारी आसा। तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें चाड़ कोई अपना त्याऊं। जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारी तारिया है चौन चुन सत्र हमारी मारिया है। आप हाद मुझा भरिया ए मरण काल का त्रासन मरिया। ओ जो सदा हमारी पच्छा श्री अस्तो जू करे हो रच्छा। राख ले हो मोह राखण हारी साहिब सन सहाय प्यारी। दीन बंद दुष्टन के हंता तमोह पुरी चातर दस कंता।

सत नाम जाको किया सब जहां सेख सेवा कर्म चढ़ाओ तिन्नी रहन जिना मन चाओ सिखी

मुसलमाना सिफत शरीत बड़बड़ करे विचार बंदे सहजे पवच बंदी वेखन को दीदार हिंदू साला ही साला दर्शन रूपे अपार तीरथ नावे अर्चा पूजा गरबास बहकार जोगी सुन त्यावन जेते लख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया काया कार सती अमर संतोख विजय देने कै विचार दे दे मंगे सहसा गुना सोप करे संसार चोरा यार ते कुड़ियारा खारा बाबे कार एक हों खाए चलाया था तिना भिकाई कार जल था जिया पुरिया लोआ आकार।

पौड़ी बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुरु विच आप रखियण कर प्रगटाख सुनाया। सतगुरु मिले सदा मुक्त है, जिनी विचो मोह चुकाया। उत्तम है विचार है, जिन सच्चे सोच तलाया।

हाउ दिता हाउ चलाया हाउ खटिया हाउ च गया हाउ में सचार कूड़ियार हाउ च पापुन विचार हाउ च नर सुर्ग अवतार हाउ बिच हसे हाउ च रोवे हाउ च भरिया हाउ में धोवे हाउ बिच जाति जिनसी खोवे हाउ च मूर्ख हाउ में स्याणा मोख मुक्त की सार न जाना हाउ च माया हाउ में छाया।

नानक जंत उपाय के संभाले सपना जिन करते करना किया चिंता भे करनीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जवारी स्वस्थ तिस तिस दिवाने भग

हार कूड़ मंडप कूड़ माड़े कूड़ बैसन हार कूड़ सोइना कूड़ रूपा कूड़ पैनन हार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपया पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खा पहुए खार कूड़ कूड़ा नेहुल गवे सरया करता किसनाल की चै दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ माख्यों कूड़ो बैपू नानक

आपे भांडे साजिन आपे पूरन दे एक नी दुध समाई है एक चूल्हे रह चढ़े एक निहाली पै सवन।

संतों के रोग है, दया क्रम काल के राजन के राजा, साधुओं के साजा महाजू।

पौड़ी वड्डी वटा पार तेरा मर्तबा रंग प्रंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब से जानला सब किस तेरे वासु तेरा कर पला तेरे घर आनंद वधाई तुद कर मान महता ते जापना अवजर सर्व कला भरपूर दिसै जत कता

माता तरत महत दिवस रात दोए ताई ताया खेले सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया वाचे।